0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। एक अमरीकी तजारती अदालत ने फैसला दिया है कि फरवरी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद करदा 10% आलमी टैरिफ गैर कानूनी है। अमरीकी अदालत बराए बैन अक्वामी तजारत ने जुमेरात को ये फैसला सुनाया। ट्रंप इंतजामिया ने तजारती एक्ट के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए वसीतर ममालिक और खित्तों पर यह महसूल आयद किया था। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ट्रंप के बड़े पैमाने के आलमी टैरिफ को ख़त्म करने के बाद इस ड्यूटी को मुतबादल इकदाम के तौर पर मुतारफ़ कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ट्रंप ने इंटरनेशनल एमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए वसी पैमाने पर महसूलात आयद करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इनमें वो महसूलात भी शामिल हैं जिन्हें ट्रंप जवाबी टैरिफ कहते हैं। सेक्शन 122 कहता है कि अदायगियों के तवाजुन में बड़े और संगीन खसारे से निमटने के लिए सदर 150 दिनों तक 15% तक टैरिफ आयद कर सकता है। मुद्दयान ने दलील दी कि ट्रंप ने सेक्शन 122 के निफाज के तकाजों को पूरा नहीं किया। इस साल जापान के खसरा के केसेस की तादाद पहले ही 400 से तजावुज़ कर चुकी है, जो 2019 में इसी अरसे में रिकॉर्ड शुदा सतह के करीब है। वाज़ेह रहे कि मस्कूरा साल गुज़िश्ता दिहाई के सबसे ज़्यादा केसेस वाला साल था। खसरा एक इंतहाई मुतअद्दी वायरस की वजह से होता है जो हवा के ज़रिए फैल सकता है। ये बुखार, खांसी और ख़ारिश का सबब बनता है और शदीद सूरतों में जानलेवा साबित हो सकता है। जापान इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ सिक्योरिटी का कहना है कि 26 अप्रैल तक के हफ्ते के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 68 तक पहुंच गई, जिससे इस साल की मजमूई तादाद 436 हो गई। इंस्टीट्यूट का अंदाज़ा है कि इनमें से 70% लोग मुल्क के अंदर उस वायरस से मुतासर हुए जो जापान में लाया गया था। 2015 में WHO ने तस्दीक की थी कि जापान ने खसरे को ख़त्म कर दिया है। शिमाली जापान के पहाड़ों में बेहोशी की हालत में मिलने वाली खातून की मौत हो गई है। इसकी वजह रीछ का हमला हो सकता है। पुलिस का कहना है कि 69 साला कुमागाई चियो को इवाते प्रिफेक्चर के हाचीमान ताई शहर में बुध के रोज़ खुर्दनी जंगली पौधे चुनने के लिए पहाड़ी जंगल में जाने के बाद लापता हो गई थी। पुलिस और इमदादी कारकुनों ने जुमेरात की सुबह जंगल के उस मकाम से तलाश शुरू की जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने मस्कूरा खातून को सुबह 8 बजे के कुछ देर बाद ज़मीन पर पड़ा पाया। मुबैना तौर पर खातून के चेहरे और सर पर ज़ख्म थे जो बज़ाहिर किसी जानवर के पंजों के लगते हैं। पुलिस रीछ के हमले के इम्कान की तहकीकात कर रही है। शहर के हुक्काम का कहना है कि मकामी शिकारियों की जानिब से जुमे की सुबह से इलाके में गश्त शुरू करने की तवक्को है।
1: और आखिर में खास खबरों का खुलासा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जुमरात को कहा कि इसके 3 गाइडेड मिसाइल तबाहकुन जहाज ईरान के बिला इश्तियाल हमले की जद में आए। ईरान में हुकाम अमरीका की तरफ से पेश किए गए अमन मंसूबे पर तबादलाए ख्याल कर रहे हैं। और इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। आज के अंक में हम लाए हैं आपके पत्र और हिंदी फिल्म जगत के अभिनेता पंकज त्रिपाठी से खास भेंट वार्ता का तीसरा और अंतिम भाग।

0: हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार दिवस कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 24 मार्च को जापान आए थे। उनकी इस जापान यात्रा के दौरान हमें भी उनसे बात करके रंगमंच से उनके प्रेम और जापान यात्रा के उनके अनुभव जानने का मौका मिला। उनके साथ हुई इस बातचीत को हम दो अंकों में अपने श्रोताओं के लिए ला चुके हैं।
1: वैसे क्या आप जानते हैं, रुपहले पर्दे पर विविधतापूर्ण किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी की जीवन यात्रा भी उतनी ही रोचक और विविधताओं से भरी हुई है। बिहार के सुदूर ग्रामीण अंचल में एक किसान परिवार में जन्मे पंकज जी ने शुरू में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक होटल में काम भी किया। इसी दौर में उनका रुझान रंगमंच की ओर बढ़ा और हमें मिला एक कमाल का अभिनेता। वहीं 1999 में एक नाटक में हिस्सा लेने के सिलसिले में उनके जीवन की पहली विदेश यात्रा जापान के लिए थी।
0: लेकिन ख्याति थोड़ी दूर थी और संघर्ष लंबा था। पटना में रंगमंच के 8 साल, फिर मुंबई में 8 साल तक छोटे छोटे बेनाम से रोल, टेलीविजन और एड फिल्मों में काम करते हुए उन्हें पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान से, जिसमें अपनी बोलती आंखों और दमदार अभिनय से पंकज त्रिपाठी ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसके बाद उनके हर किरदार में लोगों ने खुद को पाया, उसमें उन्हें एक अपनापन मिला। पंकज जी का व्यक्तित्व जितना मृदुल और सरल है, उतना ही सहज है उनका अभिनय।
1: उनसे हुई बातचीत के तीसरे अंक में आइए सुनते हैं उनके फिल्म जीवन से जुड़ी कुछ मजेदार बातें।
0: तो गांव की पगडंडी से चलते हुए रुपहले पर्दे तक का ये सफर कैसा रहा? क्या ऐसा कोई लम्हा आया आपने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब कुछ और काम करते हैं, और ये संघर्ष जारी रखने की हिम्मत कहाँ से आई?
2: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अब बहुत हुआ बस छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, गाँव में खेती बाड़ी किया है। हमें आदत है कि एक सीड को डाल के और 15 दिन प्रतीक्षा करते हैं कि वो पौधा बनेगा, और फिर 4-5 महीने प्रतीक्षा करते हैं कि उसमें फल आएंगे। तो कहीं ना कहीं से धीरज और धैर्य की ट्रेनिंग मुझे किसानी में मिल गई, तो ऐसा कभी नहीं आया। संघर्ष लंबा था और होना चाहिए, संघर्ष जितना लंबा हो सफलता में आनंद उतना ही आता है या खुशी मिलती है कि हमने परिश्रम किया तो उसका परिणाम मिला। तो मेरा कभी मन नहीं दुखी हुआ, टूटा, हौसला रहा है बरकरार।
0: आप सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इस सहजता को बनाए रखने के लिए क्या कोई खास तैयारी की जाती है? कितनी मेहनत लगती है सहज बनने के लिए? सरल होना सबसे कठिन है,
2: कठिन
0: तो इसके लिए कितनी मेहनत लगती है?
2: मेहनत मेरी बुनावट वैसी है, तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका जैसा होगा हार्डवेयर वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो मैं सहज व्यक्ति हूँ और आर्ट में भी मैं सहजता चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। हर किस्म, हर स्तर का आदमी मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी कहानियों को समझ जाए, कम कॉम्प्लिकेटेड हो। तो यस, एफर्टलेस जो बोलते हैं ना, कि सहज देखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सहजता भी ऐसा नहीं है, तो प्रैक्टिस किया हूँ मैं और कर रहा हूँ आज भी।
0: तो आपने हर तरह का किरदार बखूबी निभाया, लेकिन आपके अंदर के कलाकार को सबसे ज़्यादा मज़ा कैसा किरदार करने में आता है?
2: जो रिलेटेबल हो, जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, पॉजिटिव हो, इंस्पायरिंग हो, जो प्रेरणा देने वाला हो, क्योंकि सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ एक मुझे इंस्पिरेशन का भी मीडियम लगता है कि आप उससे आर्ट का, कलाओं का, वो पोइट्री हो, कहानी हो, कविता हो, सिनेमा हो, उसका एक पर्पस ये है कि आदमी दुखी जो व्यक्ति है उसके दुखी मन को एलिवेट कर दे, उसमें एलिवेटेड इमोशन ला दे, ताकि वो इंस्पायर हो और वो अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़े।
0: तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सुल्तान, जिसने आपको एक पहचान दिखाई, और मिमी का, भानु का जो किरदार था जिसने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, और मेट्रो इन दिनों का एक सेंसिटिव संवेदनशील पति, इन तीनों किरदार को अगर हम साथ रखें तो आपके दिल के करीब सबसे कौन है?
2: हाँ, मेरे दिल के करीब तो मेट्रो इन दिनों का होगा, क्योंकि रिसेंट है और वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है उस किरदार में, कि शहर में रहता है, मिड एज का हो चुका है, तो वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है और वो कैसे लाइफ में स्पाइस भरने के लिए एक छोटी सी गलती करता है और उस गलती से क्या क्या परिणाम होते हैं, तो वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी कहानी है इसलिए वो, और रिसेंट है इसलिए वो करीब है। बाकी मिमी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से नेशनल अवार्ड मिला है।

0: उसमें एक कमिटमेंट है उस किरदार में कि अगर वो कृति सेनन के किरदार को साथ देता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, लेकिन जब वो फंस जाती है तो उसके साथ थ्रू आउट खड़ा रहता है। उसका एक संवाद था कि वो बोलती है कि तुम भाग सकते थे मुझे छोड़ के, तुम गए क्यों नहीं? तो बोलता है कि हम ड्राइवर हैं मिमी जी, यात्री को बिठा लिया तो मंजिल पे छोड़ के ही जाते हैं, रास्ते चाहे जितने ख़राब हों। तो मैंने आपके इस परिस्थिति का एक जिम्मेदार मैं भी हूँ, तो मैं अभी जर्नी पूरी करके ही जाऊँगा। तो वो दुनिया में वैसे लोग होने चाहिए भानु की तरह, जो मिमी का किरदार है, कि तभी तो दुनिया बेहतर रहेगी। हम जब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, हौसला देंगे।
1: आपने कहा कि स्क्रीन फटीग हो रही है लोगों को, फिर भी ओटीटी भी है, सिनेमा भी है, तो इन दोनों में क्या करना ज्यादा मजा आता है आपको? और आने वाले समय भविष्य किसका है, सिनेमा का या ओटीटी का?
0: दोनों का है। ओटीटी तो एक प्लेटफॉर्म है, वो सिनेमा भी उस पर ही आता है। वो आसान है, वो आपके ड्राइंग रूम तक, आपके जेब तक है कि आप अपने जेब में कंटेंट निकाल के जब मन तब देख लीजिए। ग्रोथ तो दोनों का होगा और रीच, दोनों की रीच बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है एक आम दर्शक के लिए। लेकिन वो अगेन वही बोलूँगा कि कितना स्क्रीन देखोगे, एक दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा। अब हम घरों में करने लगे हैं ना कि डिनर के टाइम फोन रख दो, हम बातचीत, खाना खाते और बातचीत करते हुए खाएंगे। तो ये स्क्रीन हमारे जीवन में असुविधा तो पैदा कर ही रहा है। मोबाइल आया था, हमने बनाया था मोबाइल कि हम चलाएंगे, अब मोबाइल हमें चला रहा है।
1: तो फिल्म को चुनते हुए आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं? अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आप अपना रोल तय कर सकते हैं, या आपको किस बैनर के साथ काम करना है, कहानी है, निर्देशक है, या किरदार, या सह कलाकार, क्योंकि वो अच्छा टीम वर्क होना भी ज़रूरी है, तो आप क्या किसको तवज्जो देते हैं?
0: अच्छी कहानी, कहानी रिलेटेबल हो, उससे जुड़ा हो और मुझे एक्साइट करे, तो ऐसी अच्छी कहानी मिल गई तो मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ। आजकल नहीं मिल रही अच्छी कहानी, या तो थोड़ा कम कर दिया है काम, या मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मुझे जितना करना था कर लिया, अब सेलेक्टिव काम करना है। वही कहानी जो मुझे लगे कि हाँ इस कहानी का हिस्सा बनना है तो मैं जुड़ जाता हूँ, कर लेता हूँ।
1: शूटिंग से पहले मैंने सुना कि आप खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है?
0: नहीं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका पाचन तंत्र सही होना बहुत ज़रूरी है। एक्टर के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, लेकिन कलाओं परफॉर्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट मेरा यही है, मैं, मेरे पास सारंगी, तबला, सितार, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं बजाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, वो मेरा शरीर है, और शरीर दुरुस्त रहेगा तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। उसके लिए सबसे आवश्यक है पाचन, तो पाचन सही रहेगा तो सब सही रहेगा, इसलिए मैं खिचड़ी खाता हूँ।
1: तो ऐसी कोई भूमिका जो अभी भी आपका ड्रीम रोल है कि मुझे ये, क्योंकि अटल में आपने, मैंने जो देखा अटल जी के, आपने जो मैनरिज्म अपनाए हैं, उनका हाथ हिलाने का तरीका, सिर हिलाने, कमाल का था वो। तो ऐसी कोई भूमिका है जो अब भी आपका ड्रीम रोल है?
0: नहीं, ऐसी कोई भूमिका नहीं है। जो अच्छी स्क्रिप्ट लगती है उसी को ड्रीम स्क्रिप्ट बना लेता हूँ।
1: आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है, और आज मीडिया हो या फिल्में, हर जगह भाषा का स्तर थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो ऐसे में एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी हो सकती है? शब्दों में दिक्कत है।
0: शब्दों में बहुत ताकत है, इसलिए जब भी प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें कि शब्द जो है वो सम्मान भी दिलाते हैं, और शब्द जो भी है, जो है वो अपमान भी दिलवा देते हैं। तो इसलिए वाणी पे ना नियंत्रण होना अति आवश्यक है। और हम कम्युनिकेटर हैं, हम लोग, अगर हमारी कहानियाँ ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, जीवन में भी वो बहुत ज़रूरी है, और उसको लेके अवेयरनेस होनी चाहिए एक कलाकार में, एक आम आदमी में भी।
1: पर ओटीटी की बात करें जो बहुत युवाओं में भी एक्सेसिबल है, पर उसमें तो काफ़ी भाषा का जो है स्तर काफ़ी नीचे है, तो क्या लगता है आपको कहाँ रोक लगनी चाहिए?
0: हाँ, ओटीटी मैम, अगर फिर सोचना, देखना पड़ेगा कि ओटीटी जो है वो प्राइवेट व्यूइंग के लिए है, वो कम्युनिटी व्यूइंग की चीज़ नहीं है। तो प्राइवेट व्यूइंग में एक इंडिविजुअल की का फ्रीडम है कि वो प्राइवेट में क्या देखे। उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, पेमेंट एक्सेस करना होगा, और फिर आप पर्सनल स्क्रीन पे देखें अपने। तो वहाँ चूंकि सेंसर नहीं है, और उनको लगता है कि सोसाइटी को, समाज को जस का तस रखना है, समाज में जैसा है वैसा हम दिखा सकते हैं, सेंसर नहीं है। सेंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कम्युनिटी विविंग नहीं है, तो तो एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं कि वो क्या खाए, वो क्या देखे, वो क्या पहने। तो इसलिए ये बहस जो है ना, शोर की एक स्टोरी टेलर के नाते मेरा सेल्फ सेंसर है कि मैं कहानी में कैसे दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा, लेकिन उसके कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये डिपेंड है इंडिविजुअल के ऊपर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है बंद कर दीजिए।
1: एक चीज़ जो हमने भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने नोटिस करी है कि आजकल भारतीय पर्यटक तो बहुत आ रहे हैं और जापान काफ़ी लोकप्रिय होने लगा है भारतीय लोगों में। तो आने वाले समय में क्या हम यहाँ पर जापान में फिल्मों की शूटिंग होती हुई भी देखेंगे? आपका क्या सुझाव है इस बारे में?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ग्लोबल हो ही रहा है, लोग जाते ही हैं। चूँकि वेस्ट ज़्यादा गए हैं, यूरोप ज़्यादा गए हैं, अब ईस्ट में भी आएंगे। अब ये अनएक्सप्लोर्ड है हमारे सिनेमा के लिए, यहाँ की लोकेशन कहानियाँ, तो ऑफकोर्स आएंगे आने वाले समय में। मुझे दिख रहा है जैसे भारत कहीं नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा था, वो हिंदी सिनेमा से अधूरा था। अभी लोम भेड़िया गई वहाँ पे, अमर कौशिक ने किया, चूँकि अमर कौशिक अरुणाचल में रहे हैं, बचपन पला बड़ा है। तो जब वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं तो फार ईस्ट में आएंगे ही थोड़े दिनों में। अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है हिंदी सिनेमा के लोकेशंस और कहानियाँ।
1: आखिरी अनुरोध, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा पिछले 70 साल से निर्बाध प्रसारण कर रही है, दशकों से दुनिया भर से हमारे कई श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश?
0: नहीं नहीं मैं तो काफ़ी प्रसन्न हूँ जानकर कि 70 सालों से जापान में हिंदी की सेवा एक लगातार प्रसारित हो रही है, बहुत मतलब प्रशंसा का योग्य है, और आज तक आबाद रूप से कभी टूटा नहीं है इस क्रम। तो प्रशंसा के पात्र हैं NHK जो यहाँ का नेशनल प्लेटफॉर्म है, और थैंक यू सो मच, मुझे भी मौका दिया अपनी बातचीत साझा करने के लिए, और आप सबको शुभकामनाएं और थैंक यू।
2: हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ 3 कड़ियों में प्रसारित बातचीत का ये सिलसिला आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपके पत्रों और प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ जिसे भेजा है मुंबई से मंजूश्री भंडारी ने। उन्होंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ वार्तालाप को बेहद रोचक बताया। वे आगे लिखती हैं, जो सहजता उनके अभिनय में है वही बातचीत में झलक रही थी। फिल्मों के साथ साथ वे पाक कला में भी निपुण हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। जापान को उन्होंने केवल एक पर्यटक के रूप में ही नहीं बल्कि एक कलाकार की दृष्टि से भी देखा। देश विदेश भ्रमण करते हुए वहां की लोक कलाएं, आचार विचार, खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, तभी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जापानी लोक कला काबुकी के बारे में रोचक जानकारी दी। जापान में जिस तरह लोक कलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। आशा है वहां बसे हुए भारतीय जापानी जीवन के अनुशासन को जरूर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह जापान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है उसी तरह भारत के प्रांतों में भी जापान दिवस मनाया जाना चाहिए। चैरी के देश से कार्यक्रम में आप हमें विभिन्न कलाकारों के बारे में जानकारी देते हैं, उसके लिए धन्यवाद।
1: मंजूश्री जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया। वाकई पंकज जी जितने बढ़िया कलाकार हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी। वे अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हैं और ये उनके अभिनय में झलकता है। केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी लिखते हैं, 26 अप्रैल के चेरी के देश से में पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता का दूसरा भाग सुनने का सुअवसर मिला। यह संवाद न केवल अत्यंत रोचक था बल्कि कला और अभिनय की गहराइयों को समझने का एक समृद्ध माध्यम भी सिद्ध हुआ। पंकज त्रिपाठी जैसे सदे हुए अनुभवी और संवेदनशील कलाकार के विचारों को सुनना अपने आप में एक विशेष अनुभव है। उन्होंने जिस सहजता और गहराई से कला के विविध आयामों को प्रस्तुत किया वह हमारे मन को छू लेने वाला रहा। साथ ही कला के वास्तविक मायने क्या हैं जैसे प्रश्न पर उनका व्यवहारिक और जीवन से जुड़ा दृष्टिकोण प्रेरणादायक प्रतीत हुआ।
2: सुरेश जी, कार्यक्रम पसंद आया जानकर बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा ही बहुत गहरी होती है। आज आपने फिल्म के बारे में पंकज जी के विचार सुने, कैसे लगे जरूर बताएं। और देखिए, आरा बिहार से रामकुमार नीरज ने हमेशा की तरह 26 अप्रैल के कार्यक्रम की भी गहरी विवेचना की है। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी की जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों,

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चरी के देश से। मैं स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। आज के अंक में हम लाए हैं आपके पत्र और हिंदी फिल्म जगत के अभिनेता पंकज त्रिपाठी से खास भेंट वार्ता का तीसरा और अंतिम भाग।
0: हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार दिवस कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 24 मार्च को जापान आए थे। उनकी इस जापान यात्रा के दौरान हमें भी उनसे बात करके रंगमंच से उनके प्रेम और जापान यात्रा के उनके अनुभव जानने का मौका मिला। उनके साथ हुई इस बातचीत को हम दो अंकों में अपने श्रोताओं के लिए ला चुके हैं।
1: वैसे क्या आप जानते हैं, रुपहले पर्दे पर विविधतापूर्ण किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी की जीवन यात्रा भी उतनी ही रोचक और विविधताओं से भरी हुई है। बिहार के सुदूर ग्रामीण अंचल में एक किसान परिवार में जन्मे पंकज जी ने शुरू में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक होटल में काम भी किया। इसी दौर में उनका रुझान रंगमंच की ओर बढ़ा और हमें मिला एक कमाल का अभिनेता। वहीं 1999 में एक नाटक में हिस्सा लेने के सिलसिले में उनकी जीवन की पहली विदेश यात्रा जापान के लिए थी।
0: लेकिन ख्याति थोड़ी दूर थी और संघर्ष लंबा था। पटना में रंगमंच के 8 साल, फिर मुंबई में 8 साल तक छोटे छोटे बेनाम से रोल, टेलीविजन और एड फिल्मों में काम करते हुए उन्हें पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान से, जिसमें अपनी बोलती आंखों और दमदार अभिनय से पंकज त्रिपाठी ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसके बाद उनके हर किरदार में लोगों ने खुद को पाया, उसमें उन्हें एक अपनापन मिला। पंकज जी का व्यक्तित्व जितना मृदुल और सरल है, उतना ही सहज है उनका अभिनय।
1: उनसे हुई बातचीत के तीसरे अंक में आइए सुनते हैं उनके फिल्म जीवन से जुड़ी कुछ मजेदार बातें।
0: तो गांव की पगडंडी से चलते हुए रुपहले पर्दे तक का ये सफर कैसा रहा? क्या ऐसा कोई लम्हा आया आपने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब कुछ और काम करते हैं, और ये संघर्ष जारी रखने की हिम्मत कहाँ से आई?
2: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अब बहुत हुआ बस छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, गाँव में खेती बाड़ी किया है। हमें आदत है कि एक सीड को डाल के और 15 दिन प्रतीक्षा करते हैं कि वो पौधा बनेगा, और फिर 4-5 महीने प्रतीक्षा करते हैं कि उसमें फल आएंगे। तो कहीं ना कहीं से धीरज और धैर्य की ट्रेनिंग मुझे किसानी में मिल गई, तो ऐसा कभी नहीं आया। संघर्ष लंबा था और होना चाहिए, संघर्ष जितना लंबा हो सफलता में आनंद उतना ही आता है या खुशी मिलती है कि हमने परिश्रम किया तो उसका परिणाम मिला। तो मेरा कभी मन नहीं दुखी हुआ, टूटा, हौसला रहा है बरकरार।
0: आप सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इस सहजता को बनाए रखने के लिए क्या कोई खास तैयारी की जाती है? कितनी मेहनत लगती है सहज बनने के लिए? सरल होना सबसे कठिन है,
2: कठिन
0: तो इसके लिए कितनी मेहनत लगती है?
2: मेहनत मेरी बुनावट वैसी है, तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका जैसा होगा हार्डवेयर वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो मैं सहज व्यक्ति हूँ और आर्ट में भी मैं सहजता चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। हर किस्म, हर स्तर का आदमी मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी कहानियों को समझ जाए, कम कॉम्प्लिकेटेड हो। तो यस, एफर्टलेस जो बोलते हैं ना, कि सहज देखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सहजता भी ऐसा नहीं है। दो प्रैक्टिस किया हूँ मैं और कर रहा हूँ आज भी।
0: तो आपने हर तरह का किरदार बखूबी निभाया, लेकिन आपके अंदर के कलाकार को सबसे ज़्यादा मज़ा कैसा किरदार करने में आता है?
2: जो रिलेटेबल हो, जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, पॉजिटिव हो, इंस्पायरिंग हो, जो प्रेरणा देने वाला हो, क्योंकि सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ एक मुझे इंस्पिरेशन का भी मीडियम लगता है कि आप उससे आर्ट का, कलाओं का, वो पोइट्री हो, कहानी हो, कविता हो, सिनेमा हो, उसका एक पर्पस ये है कि आज दुखी जो व्यक्ति है उसके दुखी मन को एलिवेट कर दे, उसमें एलिवेटेड इमोशन ला दे, ताकि वो इंस्पायर हो और वो अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़े।
0: तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सुल्तान, जिसने आपको एक पहचान दिखाई, और मिमी का, भानु का जो किरदार था जिसने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, और मेट्रो इन दिनों का एक सेंसिटिव संवेदनशील पति, इन तीनों किरदार को अगर हम साथ रखें तो आपके दिल के करीब सबसे कौन है?
2: हाँ, मेरे दिल के करीब तो मेट्रो इन दिनों का होगा क्योंकि रिसेंट है और वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है उस किरदार में, कि शहर में रहता है, मिड एज का हो चुका है, तो वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है और वो कैसे लाइफ में स्पाइस भरने के लिए एक छोटी सी गलती करता है और उस गलती से क्या क्या परिणाम होते हैं, तो वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी कहानी है इसलिए वो, और रिसेंट है इसलिए वो करीब है। बाकी मिमी भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से नेशनल अवार्ड मिला है, उसमें एक कमिटमेंट है उस किरदार में कि अगर वो कृति सेनन के किरदार को साथ देता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, लेकिन जब वो फंस जाती है तो उसके साथ थ्रू आउट खड़ा रहता है। उसका एक संवाद था कि वो बोलती है कि तुम भाग सकते थे मुझे छोड़ के, तुम गए क्यों नहीं, तो बोलता है कि हम ड्राइवर हैं मिमी जी, यात्री को बिठा लिया तो मंजिल पे छोड़ के ही जाते हैं, रास्ते चाहे जितने ख़राब हों। तो मैंने आपके इस परिस्थिति का एक जिम्मेदार मैं भी हूँ, तो मैं अभी जर्नी पूरी करके ही जाऊँगा। तो वो दुनिया में वैसे लोग होने चाहिए भानु की तरह, जो मिमी का किरदार है, कि तभी तो दुनिया बेहतर रहेगी, हम जब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, हौसला देंगे।
0: आपने कहा कि स्क्रीन फटीग हो रही है लोगों को, फिर भी ओटीटी भी है, सिनेमा भी है, तो इन दोनों में क्या करना ज्यादा मजा आता है आपको? और आने वाले समय भविष्य किसका है, सिनेमा का या ओटीटी का?
2: दोनों का है। ओटीटी तो एक प्लेटफॉर्म है, वो सिनेमा भी उस पर ही आता है, वो आसान है, वो आपके ड्राइंग रूम तक, आपके जेब तक है कि आप अपने जेब में कंटेंट निकाल के जब मन तब देख लीजिए। ग्रोथ तो दोनों का होगा और रीच, दोनों की रीच बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है एक आम दर्शक के लिए। लेकिन अगेन वही बोलूँगा कि कितना स्क्रीन देखोगे, एक दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा। अब हम घरों में करने लगे हैं ना कि डिनर के टाइम फोन रख दो, हम बातचीत, खाना खाते और बातचीत करते हुए खाएंगे, तो ये स्क्रीन हमारे जीवन में असुविधा तो पैदा कर ही रहा है। मोबाइल आया था, हमने बनाया था मोबाइल कि हम चलाएंगे, अब मोबाइल हमें चला रहा है।
0: तो फिल्म को चुनते हुए आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं? अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आप अपना रोल तय कर सकते हैं, या आपको किस बैनर के साथ काम करना है, कहानी है, निर्देशक है, या किरदार, या सह कलाकार, क्योंकि वो अच्छा टीम वर्क होना भी ज़रूरी है, तो आप क्या, किसको तवज्जो देते हैं?
2: अच्छी कहानी, कहानी रिलेटेबल हो, उससे जुड़ाव हो और मुझे एक्साइट करे, तो ऐसी अच्छी कहानी मिल गई तो मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ। आजकल नहीं मिल रही अच्छी कहानियाँ तो थोड़ा कम कर दिया है काम, या अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मुझे जितना करना था कर लिया, अब सेलेक्टिव काम करना है, वही कहानी जो मुझे लगे कि हाँ इस कहानी का हिस्सा बनना है तो मैं जुड़ जाता हूँ, कर लेता हूँ।
0: शूटिंग से पहले मैंने सुना कि आप खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है?
2: नहीं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका पाचन तंत्र सही होना बहुत ज़रूरी है, एक्टर के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, लेकिन कलाओं परफॉर्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट मेरा यही है, मैं, मेरे पास सारंगी, तबला, सितार, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं बजाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, वो मेरा शरीर है, और शरीर दुरुस्त रहेगा तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। उसके लिए सबसे आवश्यक है पाचन, तो पाचन सही रहेगा तो सब सही रहेगा, इसलिए मैं खिचड़ी खाता हूँ।
0: तो ऐसी कोई भूमिका जो अभी भी आपका ड्रीम रोल है कि मुझे ये, क्योंकि अटल में आपने, मैंने जो देखा अटल जी के, आपने जो मैनरिज्म अपनाए हैं, उनके हाथ हिलाने का तरीका, सिर हिलाने, कमाल का था वो। तो ऐसी कोई भूमिका है जो अब भी आपका ड्रीम रोल है?
2: नहीं, ऐसी कोई भूमिका नहीं है, जो अच्छी स्क्रिप्ट लगती है उसी को ड्रीम स्क्रिप्ट बना लेता हूँ।
0: आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है, और आज मीडिया हो या फिल्में, हर जगह भाषा का स्तर थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो ऐसे में एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी हो सकती है? शब्दों में किकत है,
2: शब्दों में बहुत ताकत है, इसलिए जब भी प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें कि शब्द जो है वो सम्मान भी दिलाते हैं और शब्द जो भी है, जो है वो अपमान भी दिलवा देते हैं, तो इसलिए वाणी पे ना नियंत्रण होना अति आवश्यक है। और हम कम्युनिकेटर हैं, हम लोग, अगर हमारी कहानियाँ ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, जीवन में भी वो बहुत ज़रूरी है, और उसको लेके अवेयरनेस होनी चाहिए एक कलाकार में, एक आम आदमी में भी।
0: पर ओटीटी की बात करें जो बहुत युवाओं में भी एक्सेसिबल है, पर उसमें तो काफ़ी भाषा का जो है स्तर काफ़ी नीचे है, तो क्या लगता है आपको कहाँ रोक लगनी चाहिए?
2: हाँ, ओटीटी मैम, अगर फिर सोचना, देखना पड़ेगा कि ओटीटी जो है वो प्राइवेट व्यूइंग के लिए है, वो कम्युनिटी व्यूइंग की चीज़ नहीं है। तो प्राइवेट व्यूइंग में एक इंडिविजुअल की का फ्रीडम है कि वो प्राइवेट में क्या देखे। उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, पेमेंट एक्सेस करना होगा और फिर आप पर्सनल स्क्रीन पे देखें अपने। तो वहाँ चूंकि सेंसर नहीं है और उनको लगता है कि सोसाइटी को, समाज को जस का तस रखना है, समाज में जैसा है वैसा हम दिखा सकते हैं, सेंसर नहीं है। सेंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। तो एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं कि वो क्या खाए, वो क्या देखे, वो क्या पहने। तो इसलिए ये बहस जो है ना, शोर की एक स्टोरी टेलर के नाते मेरा सेल्फ सेंसर है कि मैं कहानी में कैसे दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा, लेकिन उसके कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये डिपेंड है इंडिविजुअल के ऊपर। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बंद कर दीजिए।
0: एक चीज़ जो हमने भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने नोटिस करी है कि आजकल भारतीय पर्यटक तो बहुत आ रहे हैं और जापान काफ़ी लोकप्रिय होने लगा है भारतीय लोगों में। तो आने वाले समय में क्या हम यहाँ पर जापान में फिल्मों की शूटिंग होती हुई भी देखेंगे? आपका क्या सुझाव है इस बारे में?
2: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ग्लोबल हो ही रहा है, लोग जाते ही हैं। चूँकि वेस्ट ज़्यादा गए हैं, यूरोप ज़्यादा गए हैं, अब ईस्ट में भी आएंगे। अब ये अनएक्सप्लोर्ड है हमारे सिनेमा के लिए, यहाँ की लोकेशन कहानियाँ, तो ऑफकोर्स आएंगे आने वाले समय में, मुझे दिख रहा है। जैसे भारत कहीं नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा था, वो हिंदी सिनेमा से अधूरा था। अभी लोम भेड़िया गई वहाँ पे, अमर कौशिक ने किया, चूँकि अमर कौशिक अरुणाचल में रहे हैं, बचपन पला बड़ा है। तो जब वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं तो फार ईस्ट में आएंगे ही थोड़े दिनों में। अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है हिंदी सिनेमा के लोकेशंस और कहानियाँ।
0: आखिरी अनुरोध, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा पिछले 70 साल से निर्बाध प्रसारण कर रही है, दशकों से दुनिया भर से हमारे कई श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश?
2: नहीं नहीं, मैं तो काफ़ी प्रसन्न हूँ जानकर कि 70 सालों से जापान में हिंदी की सेवा एक लगातार प्रसारित हो रही है। बहुत मतलब प्रशंसा का योग्य है और आज तक आबाद रूप से कभी टूटा नहीं है इस क्रम। तो प्रशंसा के पात्र हैं NHK जो यहाँ का नेशनल प्लेटफॉर्म है। और थैंक यू सो मच, मुझे भी मौका दिया अपनी बातचीत साझा करने के लिए, और आप सबको शुभकामनाएं और थैंक यू।
1: हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ 3 कड़ियों में प्रसारित बातचीत का ये सिलसिला आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपके पत्रों और प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ जिसे भेजा है मुंबई से मंजूश्री भंडारी ने। उन्होंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ वार्तालाप को बेहद रोचक बताया। वे आगे लिखती हैं, जो सहजता उनके अभिनय में है वही बातचीत में झलक रही थी। फिल्मों के साथ साथ वे पाक कला में भी निपुण हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। जापान को उन्होंने केवल एक पर्यटक के रूप में ही नहीं बल्कि एक कलाकार की दृष्टि से भी देखा। देश विदेश भ्रमण करते हुए वहां की लोक कलाएं, आचार विचार, खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, तभी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जापानी लोक कला काबुकी के बारे में रोचक जानकारी दी। जापान में जिस तरह लोक कलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। आशा है वहां बसे हुए भारतीय जापानी जीवन के अनुशासन को जरूर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह जापान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है उसी तरह भारत के प्रांतों में भी जापान दिवस मनाया जाना चाहिए। चेरी के देश से कार्यक्रम में आप हमें विभिन्न कलाकारों के बारे में जानकारी देते हैं, उसके लिए धन्यवाद।
0: मंजूश्री जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया। वाकई पंकज जी जितने बढ़िया कलाकार हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी। वे अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हैं और ये उनके अभिनय में झलकता है। केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी लिखते हैं, 26 अप्रैल के चेरी के देश से मैं पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता का दूसरा भाग सुनने का सुअवसर मिला। यह संवाद न केवल अत्यंत रोचक था बल्कि कला और अभिनय की गहराइयों को समझने का एक समृद्ध माध्यम भी सिद्ध हुआ। पंकज त्रिपाठी जैसे सदे हुए अनुभवी और संवेदनशील कलाकार के विचारों को सुनना अपने आप में एक विशेष अनुभव है। उन्होंने जिस सहजता और गहराई से कला के विविध आयामों को प्रस्तुत किया वह हमारे मन को छू लेने वाला रहा। साथ ही कला के वास्तविक मायने क्या हैं जैसे प्रश्न पर उनका व्यवहारिक और जीवन से जुड़ा दृष्टिकोण प्रेरणादायक प्रतीत हुआ।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम पसंद आया जानकर बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा ही बहुत गहरी होती है। आज आपने फिल्म के बारे में पंकज जी के विचार सुने, कैसे लगे जरूर बताएं। और देखिए, आरा बिहार से रामकुमार नीरज ने हमेशा की तरह 26 अप्रैल के कार्यक्रम की भी गहरी विवेचना की है। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी की जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। जापान से जुड़ी उनकी स्मृतियां कार्यक्रम को और भी खास बनाती हैं। उन्होंने टोक्यो को एक अत्यंत उन्नत और अनुशासित शहर के रूप में वर्णित किया। एक रोचक पहलू ये भी है कि पंकज त्रिपाठी स्वयं बहुत कम फिल्में देखते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि वे अभिनय को केवल देखने से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखते हैं।
0: वाह नीरज जी, आपने पूरा कार्यक्रम बड़े मनोयोग से सुना और हर पहलू को बड़ी गहराई से समझा भी। हमें भी यही लगता है कि पंकज जी जब खुद इतनी कम फिल्में देखते हैं तो उनका अभिनय एकदम मौलिक है, तभी तो उसमें एक अपनापन झलकता है।
1: और देखिए, पश्चिम बंगाल पूर्व बर्धमान से प्रदीप बसाक ने 28 अप्रैल को एक फेसबुक पोस्ट देखी जो उन्हें बेहतरीन लगी। अपने पत्र में वे लिखते हैं, जापान की प्रकृति सचमुच अपने आप में एक जीवंत कविता है और जब बात प्राचीन राजधानी क्योतो की आती है तो उसकी हरियाली और भी मन को मोह लेती है। हाल ही में वहाँ के एक बौद्ध मंदिर के चारों ओर फैली ताजी हरी मेपल पत्तियों की छटा ने जैसे मन को शांति और सौंदर्य के एक अलग ही संसार में पहुंचा दिया। मंदिर की प्राचीन संरचना, उसके चारों ओर लहलहाते मेपल वृक्ष और उन पत्तियों की हल्की हवा में सरसराहट, ये वातावरण केवल देखने का ही नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव देता है। यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है जो मन को भीतर तक छू जाता है।
0: प्रदीप जी, अपने विचार साझा करने के लिए आभार। मित्रों, फेसबुक पर जापान के प्राकृतिक नजारों के, खासतौर से वासंती बहार के बहुत सारे वीडियो समय समय पर डाले जाते हैं।
1: आप सभी उन्हें देखकर आनंद लें और बताएं कैसे लग रहे हैं। इसी वीडियो पर उमेश कुमार शर्मा की भी फेसबुक टिप्पणी है, लिखा है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा जापान सच में देखने योग्य है।
0: जरा ठहरिए, क्या नाम बोला? हाँ। उमेश कुमार शर्मा? हाँ। क्या वे हरियाणा नारनौल के उमेश जी तो नहीं है जिन्हें हम बड़ी शिद्दत से याद किया करते थे? बड़े दिनों बाद उन्हें हमारी याद आई।
1: कमाल है शंग्रीला जी, आपने खूब पहचाना, क्योंकि उनकी एक अन्य टिप्पणी में वे लिखते हैं, मैं नारनौल हरियाणा से उमेश शर्मा, आपकी हिंदी सर्विस का बहुत पुराना श्रोता हूँ। उस समय तो आप केवल रेडियो पर ही प्रसारण सुनाते थे, वेबसाइट पर कुछ वर्षों से ही आप अपने कार्यक्रम सुनाने लगे हैं। जब हम कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियां भेजते तो आप उनके प्रत्युत्तर में मुझे जापान के विभिन्न क्षेत्रों की फोटो इसकी पुष्टि के लिए भेजते कि मैंने आपके अमुक कार्यक्रमों को सुनकर अपनी टिप्पणी आपको भेजी। मोबाइल पर आपके कार्यक्रम भी समय मिलने पर जरूर सुन लेता हूँ।
0: उमेश जी, चेरी के देश से कार्यक्रम में आपका दोबारा स्वागत है। आशा है आपकी उपस्थिति अब पहले की तरह ही नियमित रहेगी और हमें आपके पत्र मिलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लें, तो अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और कामायनी सिंह को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपकी मेजबान हैं खदीजा शाह और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। खदीजा, दीवान खाना ऐसा गोशा जहाँ कुछ सुनने और कुछ कहने के लिए हम मिलकर बैठे।
1: जी बिल्कुल वसीमा, यही तो है हमारी महफिल दीवान खाना। इसमें शिरकत के लिए सामईन पहले खत लिखते थे, वही खत जो निस्फ मुलाकात कहलाता है।
0: अरे बहन, अब आ गया ईमेल का जमाना। खत के बजाय ईमेल निस्फ मुलाकात बन गई। नया दौर, नए तकाजे।
1: बिल्कुल, इन तकाजों को पूरा करने के लिए आज की इस महफिल में ईमेल के जरिए पैगाम, खत, तस्वीर या वीडियो भेजने का तरीका बताते हैं। सामईन हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर आएं और फिर नीचे स्क्रॉल करके दीवान खाना की तस्वीर तलाश करें।
0: अच्छा अच्छा, वो जो हमारी सब मेजबानों वाली तस्वीर है उस पे क्लिक करना है क्या?
1: जी बिल्कुल, दुरुस्त कहा आपने। अब नए खुलने वाले सफ़े पर दीवान खाना की थंबनेल यानी पहली तस्वीर के छोटे वर्जन की बाएं जानिब पैगामात यहाँ भेजें का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें। अब आप हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं वाले सफ़े पर पहुंच जाएंगे।
0: अरे खदीजा, कोई आसान तरीका नहीं इस सफ़े पे आने का?
1: बिल्कुल है भाई, सर्च इंजन पर उर्दू में लिखें हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, तो सर्च में NHK का ये सफ़ा आपको मिल जाएगा।
0: सामिन, यहाँ ये याद रखिए कि उर्दू रस्म अलखत में लिखना है आपने हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, उर्दू रस्म अलखत में लिखना है। और लेकिन अगर हमारे सामने कोई उर्दू नहीं लिख सकते तो उनके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि वो हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu के ज़रिए इस पे तशरीफ़ लाएं। और खदीजा, अब आगे बताइए कि आगे कहाँ जाना है।
1: जी, इस पेज पर तस्वीर के नीचे दिए गई हिदायत को पढ़ने के बाद फॉर्म की तरफ बढ़ें वाले लिंक पर क्लिक करें।
0: सामिन, लिंक है फॉर्म की तरफ बढ़ें।
1: जी हाँ, अगर पहली रसाई पर रजामंदी की तस्दीक वाला पेज खुले तो पढ़कर कबूल के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ने के लिए तीर के निशान पर क्लिक करें।
0: एक और क्लिक।
1: हाँ जी, इसके बाद हो सकता है कि नोट वाला पेज खुले। ऐसी सूरत में मंदरजा बाला से मुत्तफिक को मुंतखब करके बाएं जानब वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। अब फॉर्म खुलेगा जिसमें आपसे ये मालूमात मांगी जाएगी। एक, आपका उर्फी नाम यानी निक नेम, दूसरा आपका ईमेल एड्रेस और तीसरा आपका पैगाम यानी मैसेज। पैगाम लिखने के बाद अगला सवाल ये होगा कि क्या आप कोई वीडियो या तस्वीर भी साथ भेजना चाहते हैं या सिर्फ तहरीरी पैगाम काफ़ी है।
0: अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ मैसेज भेजना है तो मैं क्या करूँ?
1: तब नहीं वाला ऑप्शन मुंतखब करके तीर के निशान पर क्लिक करने से आपका पैगाम हम तक पहुंच जाएगा।
0: अच्छा खदीजा, मैंने खत लिखा है और मैं उसकी तस्वीर भेजना चाहती हूं या मुझे कोई वीडियो शेयर करनी है, तो उसका तरीका बताएं ना।
1: जी, ऐसी सूरत में हाँ वाला ऑप्शन मुंतखब करें और आगे वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। नए सफ़े पर आप अपनी फाइल का उन्वान यानी टाइटल लिखें, उसके बाद बाएं जानिब वाले तीर पर क्लिक करें। अब अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीले रंग के सबमिट बटन पर क्लिक करें।
0: मुझे पता है सामिन, जब ऐसा करेंगे तो सक्सेस योर फाइल हैज़ बीन सबमिटेड का मैसेज आएगा, उसमें आपने नीचे कंफर्म का ऑप्शन मुंतखब करके कंप्लीट पर क्लिक करना है ना खदीजा?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बस यही करना है। इस क्लिक के बाद आपकी फाइल, आपका पैगाम या खत फौरन हम तक पहुँच जाएगा। हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे और अगर मुनासिब हुआ तो दीवान खाने के प्रोग्राम में शामिल भी कर देंगे।
0: और हम उन पैगामात के मुंतजिर रहेंगे जिन्हें भेजना अब खुल जा सिमसिम की तरह सिर्फ एक क्लिक से ही मुमकिन है।
1: वसीमा, इतनी बार क्लिक क्लिक कर रही आप, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मेरे आसपास कोई प्यारी सी बतख फिर रही है।
0: अरे खदीजा, मुझे बतख कह डाला सिर्फ एक क्लिक पे।
1: भाई हाँ, कहा तो सही लेकिन प्यारी भी साथ कहा। अच्छा, क्लिक की कमालात तो हैरान कर देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT और मसनूई जहानत यानी AI के इस दौर में आप पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने के बारे में मालूमात ले सकते हैं।
0: सामिन, अभी खदीजा ने कहा IT, कहा AI, तो इसी मौजू पर जापान में लगी एक नुमाइश में शिरकत की दास्तान भी सुनानी है हमने आपको।
1: ارے واہ, تو سمجھ نہ آئیے, کیوں نہ ہم بھی سنیں. کب اور کہاں لگی یہ نمائش؟
2: السلام علیکم سامعین. اس سال جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی یعنی جائیکا کی اعانت سے پاکستان کی 12 آئی ٹی کمپنیاں جاپان میں ایک نمائش کے لیے تشریف لائی ہیں, اور یہ نمائش جو ہو رہی ہے ٹوکیو کی بگ سائٹ میں. ایک پاکستانی نوجوان پاکستانی بوتھ کے سامنے جاپانی بولتے ہوئے یہاں آنے والے لوگوں کو کچھ وضاحت کر رہے ہیں, تو آئیے ان کی باتیں سنتے ہیں.
3: میرا نام یاسر ایاز ہے, میں پاکستان میں نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا چیئرپرسن ہوں, اور پاکستان میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ میں پروفیسر بھی ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کے شعبے میں. اس کے علاوہ میری اسپن آف کمپنی بھی ہے, اور اس کو لے کے آج ہم جاپان میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اے آئی کے مختلف جو پروڈکٹس ہیں وہ جاپان میں انٹروڈیوس کروائیں.
2: تو آپ تو بڑی اچھی توقعات لے کے آئے ہیں جاپان میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے بوتھ پہ کافی لوگ آ رہے ہیں, اور کس قسم کی چیزوں میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں وہ لوگ؟
3: ہمیں بہت ساری اچھی لیڈز ملی ہیں, اور جاپانی لوگوں کا کیونکہ ایشیا ہے اور پاکستان کا بھی لوگوں کے جو ٹرینڈز ہیں وہ جاپانی لوگوں کے ٹرینڈ سے کافی ملتے ہیں, تو بہت سارے لوگ پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں ہمیں سب سے پہلے جو کل بڑی ہمیں ایک لیڈ ملی وہ تو تھی ہمارے, کیونکہ پاکستان میں بدھسٹ کی بہت ہیریٹیج ہے اور ہم بدھسٹ کی بہت ساری ہیریٹیج سائٹس کو ریکریٹ کرتے ہیں. مثلاً یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان میں جو ٹیکسلا کے ایریے میں دھرمراجکا اسٹوپا ہے, ہمارے پاس جولیان کی موناسٹری ہے, بہت سارے جو لاسٹ ہیریٹیج ہے اس کو ہم ریکریٹ کرتے ہیں گرافکس میں. تو ان کو فار ایگزامپل گرافکس میں ریکریٹ کر کے جاپنیز ہیریٹیج کو بھی اور پاکستان کی اولڈ بدھسٹ ہیریٹیج کو ہم جاپان کے میوزیمز میں شو کیس کر سکتے ہیں. اس پہ ہماری جاپان کے کچھ میوزیم سے میٹنگ بھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ہم جاپان میں بہت سارا کام کر رہے ہیں یہاں کی جونتندو یونیورسٹی کے ساتھ بھی اور میڈیکل پروڈکٹس میں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جو ہم ان کو دکھایا ہے کہ ہم نے پہلے اس طرح کے پروجیکٹس کیے ہیں, اور مزید پروجیکٹ ہم سائن اپ کر سکتے ہیں میڈیکل لوگوں کے لیے. تو اس میں فریلٹی اسیسمنٹ ہے کہ جو بزرگ لوگ جاپان میں کافی زیادہ تعداد میں ہیں, تو ان کی فزیکل فریلٹی کو میئر کرنا کہ ان کے کون سے مسلز کمزور ہیں, کون سے مسل طاقتور ہیں, جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ ان کو کس قسم کی فزیو تھراپی کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایک ایکسٹراڈنری ایکسپیرینس ہے کہ ہم لوکل اے آئی ڈپلوائے کر کے بھی کنفیگر کرتے ہیں, جو کہ ایک بڑا ایکسٹراڈنری ہے.
2: بہت شکریہ, اچھی وضاحت کی انہوں نے. اب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان میں آئی ٹی کے کون

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से। मैं स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। आज के अंक में हम लाए हैं आपके पत्र और हिंदी फिल्म जगत के अभिनेता पंकज त्रिपाठी से खास भेंट वार्ता का तीसरा और अंतिम भाग।
0: हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार दिवस कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 24 मार्च को जापान आए थे। उनकी इस जापान यात्रा के दौरान हमें भी उनसे बात करके रंगमंच से उनके प्रेम और जापान यात्रा के उनके अनुभव जानने का मौका मिला। उनके साथ हुई इस बातचीत को हम दो अंकों में अपने श्रोताओं के लिए ला चुके हैं।
1: वैसे क्या आप जानते हैं, रुपहले पर्दे पर विविधतापूर्ण किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी की जीवन यात्रा भी उतनी ही रोचक और विविधताओं से भरी हुई है। बिहार के सुदूर ग्रामीण अंचल में एक किसान परिवार में जन्मे पंकज जी ने शुरू में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक होटल में काम भी किया। इसी दौर में उनका रुझान रंगमंच की ओर बढ़ा और हमें मिला एक कमाल का अभिनेता। वहीं 1999 में एक नाटक में हिस्सा लेने के सिलसिले में उनके जीवन की पहली विदेश यात्रा जापान के लिए थी।
0: लेकिन ख्याति थोड़ी दूर थी और संघर्ष लंबा था। पटना में रंगमंच के 8 साल, फिर मुंबई में 8 साल तक छोटे छोटे बेनाम से रोल, टेलीविजन और एड फिल्मों में काम करते हुए उन्हें पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान से, जिसमें अपनी बोलती आंखों और दमदार अभिनय से पंकज त्रिपाठी ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसके बाद उनके हर किरदार में लोगों ने खुद को पाया, उसमें उन्हें एक अपनापन मिला। पंकज जी का व्यक्तित्व जितना मृदुल और सरल है, उतना ही सहज है उनका अभिनय।
1: उनसे हुई बातचीत के तीसरे अंक में आइए सुनते हैं उनके फिल्म जीवन से जुड़ी कुछ मजेदार बातें।
0: तो गांव की पगडंडी से चलते हुए रुपहले पर्दे तक का ये सफर कैसा रहा? क्या ऐसा कोई लम्हा आया आपने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब कुछ और काम करते हैं, और ये संघर्ष जारी रखने की हिम्मत कहाँ से आई?
2: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अब बहुत हुआ बस छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, गाँव में खेती बाड़ी किया है। हमें आदत है कि एक सीड को डाल के और 15 दिन प्रतीक्षा करते हैं कि वो पौधा बनेगा, और फिर 4-5 महीने प्रतीक्षा करते हैं कि उसमें फल आएंगे। तो कहीं ना कहीं से धीरज और धैर्य की ट्रेनिंग मुझे किसानी में मिल गई, तो ऐसा कभी नहीं आया। संघर्ष लंबा था और होना चाहिए, संघर्ष जितना लंबा हो सफलता में आनंद उतना ही आता है या खुशी मिलती है कि हमने परिश्रम किया तो उसका परिणाम मिला। तो मेरा कभी मन नहीं दुखी हुआ, टूटा, हौसला रहा है बरकरार।
0: आप सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इस सहजता को बनाए रखने के लिए क्या कोई खास तैयारी की जाती है? कितनी मेहनत लगती है सहज बनने के लिए? सरल होना सबसे कठिन है,
2: कठिन
0: तो इसके लिए कितनी मेहनत लगती है?
2: मेहनत मेरी बुनावट वैसी है, तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका जैसा होगा हार्डवेयर वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो मैं सहज व्यक्ति हूँ और आर्ट में भी मैं सहजता चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। हर किस्म, हर स्तर का आदमी मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी कहानियों को समझ जाए, कम कॉम्प्लिकेटेड हो। तो यस, एफर्टलेस जो बोलते हैं ना, कि सहज देखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सहजता भी ऐसा नहीं है, तो वो प्रैक्टिस किया हूँ मैं और कर रहा हूँ आज भी।
0: तो आपने हर तरह का किरदार बखूबी निभाया, लेकिन आपके अंदर के कलाकार को सबसे ज़्यादा मज़ा कैसा किरदार करने में आता है?
2: जो रिलेटेबल हो, जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, पॉजिटिव हो, इंस्पायरिंग हो, जो प्रेरणा देने वाला हो, क्योंकि सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ एक मुझे इंस्पिरेशन का भी मीडियम लगता है कि आप उससे आर्ट का, कलाओं का, वो पोइट्री हो, कहानी हो, कविता हो, सिनेमा हो, उसका एक पर्पस ये है कि आदमी दुखी जो व्यक्ति है उसके दुखी मन को एलिवेट कर दे, उसमें एलिवेटेड इमोशन ला दे, ताकि वो इंस्पायर हो और वो अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़े।
0: तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सुल्तान, जिसने आपको एक पहचान दिखाई, और मिमी का, भानु का जो किरदार था जिसने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, और मेट्रो इन दिनों का एक सेंसिटिव संवेदनशील पति, इन तीनों किरदार को अगर हम साथ रखें तो आपके दिल के करीब सबसे कौन है?
2: हाँ, मेरे दिल के करीब तो मेट्रो इन दिनों का होगा क्योंकि रिसेंट है और वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है उस किरदार में, कि शहर में रहता है, मिड एज का हो चुका है, तो वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है और वो कैसे लाइफ में स्पाइस भरने के लिए एक छोटी सी गलती करता है और उस गलती से क्या क्या परिणाम होते हैं, तो वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी कहानी है इसलिए वो, और रिसेंट है इसलिए वो करीब है। बाकी मिमी भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से नेशनल अवार्ड मिला है, उसमें एक कमिटमेंट है उस किरदार में कि अगर वो कृति सेनन के किरदार को साथ देता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, लेकिन जब वो फंस जाती है तो उसके साथ थ्रू आउट खड़ा रहता है। उसका एक संवाद था कि वो बोलती है कि तुम भाग सकते थे मुझे छोड़ के, तुम गए क्यों नहीं, तो बोलता है कि हम ड्राइवर हैं मिमी जी, यात्री को बिठा लिया तो मंजिल पे छोड़ के ही जाते हैं, रास्ते चाहे जितने ख़राब हों। तो मैंने आपके इस परिस्थिति का एक जिम्मेदार मैं भी हूँ, तो मैं अभी जर्नी पूरी करके ही जाऊँगा। तो वो दुनिया में वैसे लोग होने चाहिए भानु की तरह, जो मिमी का किरदार है, कि तभी तो दुनिया बेहतर रहेगी, हम जब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, हौसला देंगे।
0: आपने कहा कि स्क्रीन फटीग हो रही है लोगों को, फिर भी ओटीटी भी है, सिनेमा भी है, तो इन दोनों में क्या करना ज्यादा मजा आता है आपको, और आने वाले समय भविष्य किसका है, सिनेमा का या ओटीटी का?
2: दोनों का है। ओटीटी तो एक प्लेटफॉर्म है, वो सिनेमा भी उस पर ही आता है, वो आसान है, वो आपके ड्राइंग रूम तक, आपके जेब तक है कि आप अपने जेब में कंटेंट निकाल के जब मन तब देख लीजिए। ग्रोथ तो दोनों का होगा और रीच, दोनों की रीच बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है एक आम दर्शक के लिए। लेकिन अगेन वही बोलूँगा कि कितना स्क्रीन देखोगे, एक दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा। अब हम घरों में करने लगे हैं ना कि डिनर के टाइम फोन रख दो, हम बातचीत, खाना खाते और बातचीत करते हुए खाएंगे, तो ये स्क्रीन हमारे जीवन में असुविधा तो पैदा कर ही रहा है। मोबाइल आया था, हमने बनाया था मोबाइल कि हम चलाएंगे, अब मोबाइल हमें चला रहा है।
0: तो फिल्म को चुनते हुए आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं? अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आप अपना रोल तय कर सकते हैं, या आपको किस बैनर के साथ काम करना है, कहानी है, निर्देशक है, या किरदार, या सह कलाकार, क्योंकि वो अच्छा टीम वर्क होना भी ज़रूरी है, तो आप क्या, किसको तवज्जो देते हैं?
2: अच्छी कहानी, कहानी रिलेटेबल हो, उससे जुड़ाव हो और मुझे एक्साइट करे, तो ऐसी अच्छी कहानी मिल गई तो मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ। आजकल नहीं मिल रही अच्छी कहानी, या तो थोड़ा कम कर दिया है काम, या मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मुझे जितना करना था कर लिया, अब सेलेक्टिव काम करना है, वही कहानी जो मुझे लगे कि हाँ इस कहानी का हिस्सा बनना है, तो मैं जुड़ जाता हूँ, कर लेता हूँ।

0: शूटिंग से पहले मैंने सुना कि आप खिचड़ी खाना पसंद करती हैं, इसकी क्या वजह है?
1: नहीं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका पाचन तंत्र सही होना बहुत ज़रूरी है। एक्टर के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, लेकिन कलाओं परफॉर्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट मेरा यही है, मेरे पास सारंगी, तबला, सितार, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं बजाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, वो मेरा शरीर है, और शरीर दुरुस्त रहेगा तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। उसके लिए सबसे आवश्यक है पाचन, तो पाचन सही रहेगा तो सब सही रहेगा, इसलिए मैं खिचड़ी खाता हूँ।
0: तो ऐसी कोई भूमिका जो अभी भी आपका ड्रीम रोल है कि मुझे ये, क्योंकि अटल में आपने, मैंने जो देखा अटल जी के, आपने जो मैनरिज्म अपनाए हैं, उनके हाथ हिलाने का तरीका, सिर हिलाने, कमाल का था वो। तो ऐसी कोई भूमिका है जो अब भी आपका ड्रीम रोल है?
1: नहीं, ऐसी कोई भूमिका नहीं है। जो अच्छी स्क्रिप्ट लगती है उसी को ड्रीम स्क्रिप्ट बना लेता हूँ।
0: आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है, और आज मीडिया हो या फिल्में, हर जगह भाषा का स्तर थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो ऐसे में एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी हो सकती है? शब्दों में किकत है,
1: शब्दों में बहुत ताकत है, इसलिए जब भी प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें कि शब्द जो है वो सम्मान भी दिलाते हैं, और शब्द जो भी है, जो हैं, वो अपमान भी दिलवा देते हैं। तो इसलिए वाणी पे ना नियंत्रण होना अति आवश्यक है। और हम कम्युनिकेटर हैं, हम लोग, अगर हमारी कहानियाँ ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, जीवन में भी। वो बहुत ज़रूरी है, और उसको लेके अवेयरनेस होनी चाहिए एक कलाकार में, एक आम आदमी में भी।
0: पर OTT की बात करें, जो बहुत युवाओं में भी एक्सेसिबल है, पर उसमें तो काफ़ी भाषा का जो है स्तर काफ़ी नीचे है, तो क्या लगता है आपको, कहाँ रोक लगनी चाहिए?
1: हाँ, OTT मैम, अगर फिर सोचना, देखना पड़ेगा कि OTT जो है वो प्राइवेट व्यूइंग के लिए है, वो कम्युनिटी व्यूइंग की चीज़ नहीं है। तो प्राइवेट व्यूइंग में एक इंडिविजुअल की का फ्रीडम है कि वो प्राइवेट में क्या देखे। उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, पेमेंट एक्सेस करना होगा, और फिर आप पर्सनल स्क्रीन पे देखें अपने। तो वहाँ चूंकि सेंसर नहीं है, और उनको लगता है कि सोसाइटी को, समाज को जस का तस रखना है, समाज में जैसा है वैसा हम दिखा सकते हैं, सेंसर नहीं है। सेंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। तो एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं कि वो क्या खाए, वो क्या देखे, वो क्या पहने। तो इसलिए ये बहस जो है ना, शोर की एक स्टोरी टेलर के नाते मेरा सेल्फ सेंसर है कि मैं कहानी में कैसे दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा, लेकिन उसके कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये डिपेंड है इंडिविजुअल के ऊपर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बंद कर दीजिए।
0: एक चीज़ जो हमने, भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने नोटिस करी है कि आजकल भारतीय पर्यटक तो बहुत आ रहे हैं, और जापान काफ़ी लोकप्रिय होने लगा है भारतीय लोगों में। तो आने वाले समय में क्या हम यहाँ पर जापान में फिल्मों की शूटिंग होते हुए भी देखेंगे? आपका क्या सुझाव है इस बारे में?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ग्लोबल हो ही रहा है, लोग जाते ही हैं। चूँकि वेस्ट ज़्यादा गए हैं, यूरोप ज़्यादा गए हैं, अब ईस्ट में भी आएंगे। अब ये अनएक्सप्लोर्ड है हमारे सिनेमा के लिए, यहाँ की लोकेशन, कहानियाँ, तो ऑफकोर्स आएंगे आने वाले समय में, मुझे दिख रहा है। जैसे भारत कहीं नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा था, वो हिंदी सिनेमा से अधूरा था। अभी लोम भेड़िया गई वहाँ पे, अमर कौशिक ने किया, चूँकि अमर कौशिक अरुणाचल में रहे हैं, बचपन पला बड़ा है। तो जब वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, तो फार ईस्ट में आएंगे ही थोड़े दिनों में। अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है हिंदी सिनेमा के लोकेशंस और कहानियाँ।
0: आखिरी अनुरोध, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा पिछले 70 साल से निर्बाध प्रसारण कर रही है, दशकों से दुनिया भर से हमारे कई श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश?
1: नहीं नहीं, मैं तो काफ़ी प्रसन्न हूँ जानकर कि 70 सालों से जापान में हिंदी की सेवा एक लगातार प्रसारित हो रही है, बहुत मतलब प्रशंसा का योग्य है, और आज तक आबाद रूप से कभी टूटा नहीं है इस क्रम। तो प्रशंसा के पात्र हैं NHK जो यहाँ का नेशनल प्लेटफॉर्म है, और थैंक यू सो मच, मुझे भी मौका दिया अपनी बातचीत साझा करने के लिए, और आप सबको शुभकामनाएं और थैंक यू।
2: हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ 3 कड़ियों में प्रसारित बातचीत का ये सिलसिला आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपके पत्रों और प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ जिसे भेजा है मुंबई से मंजूश्री भंडारी ने। उन्होंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ वार्तालाप को बेहद रोचक बताया। वे आगे लिखती हैं, जो सहजता उनके अभिनय में है वही बातचीत में झलक रही थी। फिल्मों के साथ साथ वे पाक कला में भी निपुण हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। जापान को उन्होंने केवल एक पर्यटक के रूप में ही नहीं बल्कि एक कलाकार की दृष्टि से भी देखा। देश विदेश भ्रमण करते हुए वहां की लोक कलाएं, आचार विचार, खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, तभी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जापानी लोक कला काबुकी के बारे में रोचक जानकारी दी। जापान में जिस तरह लोक कलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। आशा है वहां बसे हुए भारतीय जापानी जीवन के अनुशासन को जरूर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह जापान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है उसी तरह भारत के प्रांतों में भी जापान दिवस मनाया जाना चाहिए। चैरी के देश से कार्यक्रम में आप हमें विभिन्न कलाकारों के बारे में जानकारी देते हैं, उसके लिए धन्यवाद।
0: मंजूश्री जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया। बाकी पंकज जी जितने बढ़िया कलाकार हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी। वे अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हैं और ये उनके अभिनय में झलकता है। केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी लिखते हैं, 26 अप्रैल के चेरी के देश से मैं पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता का दूसरा भाग सुनने का सुअवसर मिला। यह संवाद न केवल अत्यंत रोचक था बल्कि कला और अभिनय की गहराइयों को समझने का एक समृद्ध माध्यम भी सिद्ध हुआ। पंकज त्रिपाठी जैसे सदे हुए अनुभवी और संवेदनशील कलाकार के विचारों को सुनना अपने आप में एक विशेष अनुभव है। उन्होंने जिस सहजता और गहराई से कला के विविध आयामों को प्रस्तुत किया वह हमारे मन को छू लेने वाला रहा। साथ ही कला के वास्तविक मायने क्या हैं जैसे प्रश्न पर उनका व्यवहारिक और जीवन से जुड़ा दृष्टिकोण प्रेरणादायक प्रतीत हुआ।
2: सुरेश जी, कार्यक्रम पसंद आया जानकर बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा ही बहुत गहरी होती है। आज आपने फिल्म के बारे में पंकज जी के विचार सुने, कैसे लगे जरूर बताएं। और देखिए, आरा बिहार से रामकुमार नीरज ने हमेशा की तरह 26 अप्रैल के कार्यक्रम की भी गहरी विवेचना की है। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी की जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। जापान से जुड़ी उनकी स्मृतियां कार्यक्रम को और भी खास बनाती हैं। उन्होंने टोक्यो को एक अत्यंत उन्नत और अनुशासित शहर के रूप में वर्णित किया। एक रोचक पहलू ये भी है कि पंकज त्रिपाठी स्वयं बहुत कम फिल्में देखते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि वे अभिनय को केवल देखने से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखते हैं।
0: वाह नीरज जी, आपने पूरा कार्यक्रम बड़े मनोयोग से सुना और हर पहलू को बड़ी गहराई से समझा भी। हमें भी यही लगता है कि पंकज जी जब खुद इतनी कम फिल्में देखते हैं तो उनका अभिनय एकदम मौलिक है, तभी तो उसमें एक अपनापन झलकता है।
2: और देखिए, पश्चिम बंगाल पूर्व बर्धमान से प्रदीप बसाक ने 28 अप्रैल को एक फेसबुक पोस्ट देखी जो उन्हें बेहतरीन लगी। अपने पत्र में वे लिखते हैं, जापान की प्रकृति सचमुच अपने आप में एक जीवंत कविता है और जब बात प्राचीन राजधानी क्योतो की आती है तो उसकी हरियाली और भी मन को मोह लेती है। हाल ही में वहाँ के एक बौद्ध मंदिर के चारों ओर फैली ताजी हरी मेपल पत्तियों की छटा ने जैसे मन को शांति और सौंदर्य के एक अलग ही संसार में पहुंचा दिया। मंदिर की प्राचीन संरचना, उसके चारों ओर लहलहाते मेपल वृक्ष और उन पत्तियों की हल्की हवा में सरसराहट, ये वातावरण केवल देखने का ही नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव देता है। यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है जो मन को भीतर तक छू जाता है।
0: प्रदीप जी, अपने विचार साझा करने के लिए आभार। मित्रों, फेसबुक पर जापान के प्राकृतिक नजारों के खासतौर से वासंती बहार के बहुत सारे वीडियो समय समय पर डाले जाते हैं।
2: आप सभी उन्हें देखकर आनंद लें और बताएं कैसे लग रहे हैं। इसी वीडियो पर उमेश कुमार शर्मा की भी फेसबुक टिप्पणी है, लिखा है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा जापान सच में देखने योग्य है।
0: जरा ठहरिए, क्या नाम बोला? हाँ। उमेश कुमार शर्मा। हाँ। क्या वे हरियाणा नारनौल के उमेश जी तो नहीं है जिन्हें हम बड़ी शिद्दत से याद किया करते थे? बड़े दिनों बाद उन्हें हमारी याद आई।
2: कमाल है शंग्रीला जी, आपने खूब पहचाना, क्योंकि उनकी एक अन्य टिप्पणी में वे लिखते हैं, मैं नारनौल हरियाणा से उमेश शर्मा, आपकी हिंदी सर्विस का बहुत पुराना श्रोता हूँ। उस समय तो आप केवल रेडियो पर ही प्रसारण सुनाते थे, वेबसाइट पर कुछ वर्षों से ही आप अपने कार्यक्रम सुनाने लगे हैं। जब हम कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियां भेजते तो आप उनके प्रत्युत्तर में मुझे जापान के विभिन्न क्षेत्रों की फोटो इसकी पुष्टि के लिए भेजते कि मैंने आपके अमुक कार्यक्रमों को सुनकर अपनी टिप्पणी आपको भेजी। मोबाइल पर आपके कार्यक्रम भी समय मिलने पर जरूर सुन लेता हूँ।
0: उमेश जी, चेरी के देश से कार्यक्रम में आपका दोबारा स्वागत है। आशा है आपकी उपस्थिति अब पहले की तरह ही नियमित रहेगी और हमें आपके पत्र मिलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लें, तो अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
2: और कामायनी सिंह को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपकी मेजबान हैं खदीजा शाह और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। खदीजा, दीवान खाना ऐसा गोशा जहाँ कुछ सुनने और कुछ कहने के लिए हम मिलकर बैठे।
1: जी बिल्कुल वसीमा, यही तो है हमारी महफिल दीवान खाना। इसमें शिरकत के लिए सामईन पहले खत लिखते थे, वही खत जो निस मुलाकात कहलाता है।
0: अरे बहन, अब आ गया ईमेल का जमाना। खत के बजाय ईमेल निस मुलाकात बन गई। नया दौर, नए तकाजे।
1: बिल्कुल, इन तकाजों को पूरा करने के लिए आज की इस महफिल में ईमेल के जरिए पैगाम, खत, तस्वीर या वीडियो भेजने का तरीका बताते हैं। सामईन हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर आएं और फिर नीचे स्क्रॉल करके दीवान खाना की तस्वीर तलाश करें।
0: अच्छा, वो जो हमारी सब मेजबानों वाली तस्वीर है उस पर क्लिक करना है क्या?
1: जी बिल्कुल, दुरुस्त कहा आपने। अब नए खुलने वाले सफ़े पर दीवान खाना की थंबनेल यानी पहली तस्वीर के छोटे वर्जन की बाएं जानिब पैगामात यहाँ भेजें का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें। अब आप हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं वाले सफ़े पर पहुँच जाएंगे।
0: अरे खदीजा, कोई आसान तरीका नहीं इस सफ़े पे आने का?
1: बिल्कुल है भाई, सर्च इंजन पर उर्दू में लिखे हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं तो सर्च में NHK का ये सफ़ा आपको मिल जाएगा।
0: सामिन, यहाँ ये याद रखिए कि उर्दू रस्मुलखत में लिखना है आपने हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, उर्दू रस्मुलखत में लिखना है। और लेकिन अगर हमारे सामने कोई उर्दू नहीं लिख सकते तो उनके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि वो हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu के जरिए इस पे तशरीफ लाएं। और खदीजा, अब आगे बताइए कि आगे कहाँ जाना है।
1: जी, इस पेज पर तस्वीर के नीचे दिए गई हिदायत को पढ़ने के बाद फॉर्म की तरफ बढ़ें वाले लिंक पर क्लिक करें।
0: सामिन, लिंक है फॉर्म की तरफ बढ़ें।
1: जी हाँ, अगर पहली रसाई पर रजामंदी की तस्दीक वाला पेज खुले तो पढ़कर कबूल के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ने के लिए तीर के निशान पर क्लिक करें।
0: एक और क्लिक।
1: हाँ जी, इसके बाद हो सकता है कि नोट वाला पेज खुले। ऐसी सूरत में मंदरजा बाला से मुत्तफिक को मुंतखब करके बाएं जानिब वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। अब फॉर्म खुलेगा।

0: जिसमें आपसे ये मालूमात मांगी जाएगी। एक, आपका उर्फी नाम यानी निक नेम, दूसरा आपका ईमेल एड्रेस और तीसरा आपका पैगाम यानी मैसेज। पैगाम लिखने के बाद अगला सवाल ये होगा कि क्या आप कोई वीडियो या तस्वीर भी साथ भेजना चाहते हैं या सिर्फ तहरीरी पैगाम काफ़ी है।
1: अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ मैसेज भेजना है तो मैं क्या करूँ?
0: तब नहीं वाला ऑप्शन मुंतखब करके तीर के निशान पर क्लिक करने से आपका पैगाम हम तक पहुंच जाएगा।
1: अच्छा खदीजा, मैंने खत लिखा है और मैं उसकी तस्वीर भेजना चाहती हूँ या मुझे कोई वीडियो शेयर करनी है, तो उसका तरीका बताएं ना।
0: जी, ऐसी सूरत में हाँ वाला ऑप्शन मुंतखब करें और आगे वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। नए सफ़े पर आप अपनी फाइल का उन्वान यानी टाइटल लिखें, उसके बाद बाएं जानिब वाले तीर पर क्लिक करें। अब अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीले रंग के सबमिट बटन पर क्लिक करें।
1: मुझे पता है सामिन, जब ऐसा करेंगे तो सक्सेस योर फाइल हैज़ बीन सबमिटेड का मैसेज आएगा, उस पर अपने नीचे कंफर्म का ऑप्शन मुंतखब करके कंप्लीट पर क्लिक करना है ना खदीजा?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बस यही करना है। इस क्लिक के बाद आपकी फाइल, आपका पैगाम या खत फौरन हम तक पहुंच जाएगा। हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे और अगर मुनासिब हुआ तो दीवान खाने के प्रोग्राम में शामिल भी कर देंगे।
1: और हम उन पैगामात के मुंतजिर रहेंगे जिन्हें भेजना अब खुल जा सिमसिम की तरह सिर्फ एक क्लिक से ही मुमकिन है।
0: वसीमा, इतनी बार क्लिक क्लिक कर रही हैं आप, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मेरे आसपास कोई प्यारी सी बतख फिर रही है।
1: अरे खदीजा, मुझे बतख कह डाला सिर्फ एक क्लिक पे।
0: भाई हाँ, कहा तो सही लेकिन प्यारी भी साथ कहा। अच्छा, क्लिक की कमालात तो हैरान कर देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी और मसनूई जहानत यानी एआई के इस दौर में आप पलक झपकते ही दुनिया की किसी भी कोने के बारे में मालूमात ले सकते हैं।
1: सामिन, अभी खदीजा ने कहा आईटी, कहा एआई, तो इसी मौजू पर जापान में लगी एक नुमाइश में शिरकत की दास्तान भी सुनानी है हमने आपको।
0: अरे वाह, तो सामिन आइए क्यों ना हम भी सुने। कब और कहां लगी ये नुमाइश?
2: अस्सलाम वालेकुम सामिन, इस साल जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जाइका की एयानत से पाकिस्तान की 12 आईटी कंपनियां जापान में एक नुमाइश के लिए तशरीफ़ लाई हैं और यह नुमाइश जो हो रही है टोक्यो के बिग साइट में। एक पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तानी बूथ के सामने जापानी बोलते हुए यहां आने वाले लोगों को कुछ वजाहत कर रहे हैं, तो आइए उनकी बातें सुनते हैं।
3: मेरा नाम यासर अयाज है, मैं पाकिस्तान में नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चेयरपर्सन हूँ और पाकिस्तान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट में प्रोफेसर भी हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के शोबे में। इसके अलावा मेरी स्पिन ऑफ कंपनी भी है और उसको लेकर आज हम जापान में यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि हम एआई के मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो जापान में इंट्रोड्यूस करवाएं।
2: तो आप तो बड़ी अच्छी तवक्कुआत लेके आए हैं जापान में, तो क्या आपको लगता है आपके बूथ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और किस किस्म की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं वो लोग?
3: हमें बहुत सारी अच्छी लीड्स मिली हैं और जापानी लोगों का, क्योंकि एशिया है और पाकिस्तान का भी लोगों के जो ट्रेंड्स हैं वो जापानी लोगों के ट्रेंड से काफ़ी मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। और इसमें हमें सबसे पहले जो कल बड़ी हमें एक लीड मिली वो तो थी हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में बुद्धिस्ट की बहुत हेरिटेज है और बुद्धिस्ट की बहुत सारी हेरिटेज साइट्स को रिक्रिएट करते हैं। मसलन ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान में जो टेक्सिला के एरिए में धर्मराजिका स्टूपा है, हमारे पास जूलियान की मोनास्ट्री है, बहुत सारे जो लॉस्ट हेरिटेज है उसको हम रिक्रिएट करते हैं ग्राफिक्स में। तो इनको एग्जाम्पल ग्राफिक्स में रिक्रिएट करके जापानीज हेरिटेज को भी और पाकिस्तान की ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज को हम जापान के म्यूजियम्स में शोकेस कर सकते हैं। इस पर हमारी जापान के कुछ म्यूजियम से मीटिंग भी हुई है। इसके अलावा हम जापान में बहुत सारा काम कर रहे हैं यहाँ की जुनतेंदो यूनिवर्सिटी के साथ भी और मेडिकल प्रोडक्ट्स में, तो ये एक एग्जाम्पल है जो हम इनको दिखाया है कि हमने पहले इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं और मजीद प्रोजेक्ट हम साइन अप कर सकते हैं मेडिकल लोगों के लिए। तो इसमें फ्रेल्टी असेसमेंट है कि जो बुजुर्ग लोग जापान में काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं तो उनकी फिज़िकल फ्रेल्टी को मैयर करना कि उनके कौन से मसल्स कमज़ोर हैं, कौन से मसल ताकतवर हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि उनको किस किस्म की फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। हमारे पास एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस है कि हम लोकल एआई डिप्लॉय करके भी कन्फिगर करते हैं, जो कि एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी है।
2: बहुत शुक्रिया, अच्छी वजाहत की इन्होंने। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में आईटी के कौन से शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हो रही है? चार पांच शोबों का तो आपने जिक्र कर दिया, पर इनमें से सबसे जो ग्रोथ वाला है, जो सबसे ज़्यादा फ़रोग पाने वाला, सबसे ज़्यादा तरक्की वाला, वो कौन सा शोबा है?
3: आई थिंक इसमें तो कोई डाउट इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ पाने वाला शोबा एआई का है इस वक्त आईटी के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और कई सर्वेज ने ये इंडिकेट किया है कि दुनिया में 72% तक अब कंपनियां अपने मेन प्रोडक्ट को एआई में बदल रही हैं, जो उनके मेन प्रोडक्ट जिस भी डायरेक्शन में है उनको वो एआई के प्रोडक्ट में बदलना चाहती हैं, जिसमें कई कंपनियों के नाम